नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से आज की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की

ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामूल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

काकभूषुंडी गरुड़ को राम राज्य की महिमा सुना रहे हैं। कहते हैं, राम राज्य में किसी प्राणी को भी दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं व्याप्ते। सबका एक दूसरे से मित्रवत प्रेम होता है। सब लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हुए मर्यादा पूर्ण जीवन जीते हैं। न कोई अभावग्रस्त है, न ही कोई पीड़ित अथवा शोषित। न तो छोटी आयु में किसी का मरण होता है, न ही कोई रोगग्रस्त। सभी निष्कलुष और निष्कपट व्यवहार करते हैं। सबके मन में परोपकार की भावना विद्यमान रहती है। पुरुष एक पत्नी व्रती और उसी भांति स्त्रियां पति परायणा होती हैं। कोई किसी भांति का अपराध नहीं करता, अतः किसी को दंडित करने का अवसर नहीं आता। जड़ चेतन पशु पक्षी वनस्पति और खेती सब इस प्रकार प्रफुल्लित प्रसन्न पुष्पित पल्लवित और फलदायी हैं, मानो त्रेता युग में सतयुग उतर आया है।

0: निवेशे नवीनतायां प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः उद्योगनेतारः व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगताः सन्ति। जम्मू कश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरम् एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभ्रात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी

0: तरह बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज पांच दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गर...

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% प्रतिशत हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
8: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores the growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
7: The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. In line with the recommendations of the National Education Policy, the CBSE had introduced two board examinations for Class 10 from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. The CBSE said that the overall pass percentage after combining the results of the main and second board examinations of this year was 96.78%. In Jammu and Kashmir, Sri Amarnath Ji Yatra will remain suspended from both the Pahalgam and the Baltal routes from today as a precautionary measure in view of the adverse weather forecast. The decision was taken following the India Meteorological Department's forecast of inclement weather over the next few days to ensure the safety and well-being of pilgrims. The official said no onward movement of Yatris will be allowed from the Baltal and Nunwan Chandanwadi base camps until further orders. Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board has also temporarily suspended the Vaishno Devi Yatra in view of the inclement weather advisory issued by the IMD. According to an official update issued by the Shrine Board, the decision

गए परदेसी, ना जाने कौन सा अंगना है कौन सी अटरिया। घर अपने हमें बहुत याद आए, हम हो गए।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन?
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी, लोकेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आपका प्रोग्राम में प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता हूँ मैडम जी।
0: अरे वाह क्या बात है, मुझे लग रहा है
1: हमारी... आज से नहीं सुन रहा हूँ, करीब मैं 3-4 साल से सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम, और आज काफी दिनों के बाद में मेरा फोन लगा है, जब से ये प्रोग्राम का आपका रिकॉर्डेड किया गया जब से।
0: जी जी,
1: जैन महाकालेश्वर जी की नगरी है, एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, और सभी दर्शनार्थी बाहर से तीर्थयात्री उज्जैन में दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा और शांत स्वभाव शहर है मैडम।
0: जी जी, वो तो है, आपने सही बोला। आप वैसे क्या करते हैं सर?
1: मैडम मैं हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा।
0: हाँ।
1: और इसी बिजनेस को करते हुए हमें 40 साल हो गए हैं, और 40 साल से हम हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस कर रहे हैं, और जब से ही रेडियो सुनते हैं, रेडियो में मतलब समझ लो कि हम दीवाने हैं रेडियो के, अच्छी जानकारी मिल जाती है, अच्छे प्रोग्राम रहते हैं, और आकाशवाणी भुज का भी हमने ये फोन वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमें।
0: ओके, तो अच्छा लगा ये सब सुनकर कि आप यहाँ के प्रोग्राम इतने अच्छे से, इतने ध्यान से और इतने टाइम से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: जी मैडम
0: जी, वैसे कि आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: ये मैडम मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है हीरो, में गाना है निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार।
0: हाँ।
1: गाना है ना, निंदिया से जागी बहार, ऐसा मौसम देखा पहली बार।

0: नमस्कार, फोन इन आपने पसंद।
1: जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल।
1: मैम शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैम बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं मैम?
0: मैं भी ठीक हूँ। और आज क्या है आपकी फरमाइश?
1: मैम मूवी का नाम है शीशा। और उसमें एक ऋचा शर्मा जी की आवाज में गाना है, बस इसका दर्द लगा बैठे।
0: जी जरूर सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फोन करते रहिए।
1: बिल्कुल मैम, मैं बहुत दिन से प्रयास में था, आप लाइन, खुशी हो गई मुझे आपसे बात हो गई।
0: जी हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
1: जी थैंक यू मैम।
0: थैंक यू।

0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, आप कौन?
0: मैं गंगाधर सावनकर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
1: जी गंगाधर जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया दीदी, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत बढ़िया।
0: हाँ दीदी, आपका तरफ बारिश है क्या?
1: नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे है क्या?
0: अभी कल बारिश हुई थोड़ा सा, आज बादल है, पानी आने के आशंका है।
1: हाँ ये थोड़े से बादल यहाँ पे भी भेज दो।
0: बिल्कुल भेजेंगे दीदी, आपके पास गुजरात में।
1: जी
0: हाँ
1: जी जी, बताइए वैसे घर में सब कैसे हैं?
0: सब बढ़िया दीदी, सब कुशल मंगल है। भूज का कार्यक्रम सुनते दीदी, हाँ। बहुत अच्छे लगते हमको।
1: हाँ वैसे कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है?
0: ये फोन कार्यक्रम दीदी, हर संडे को सुनते हैं।
1: ओके, वैसे आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: अजनबी फिल्म का।
1: हाँ अजनबी का।
0: हाँ, भीगी भीगी रातों में किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया। कुछ मित्रों का नाम नहीं तो दीदी
1: जी,
0: गौतम जी राय बोले, तुकाराम जाधव, भगवान सिंह जी, धीरज राबरी जी, अफजल भाई भावनगर से, और तनुश्री सातारा से, राजेंद्र गंगवार जी, उदयलाल टेलर जी, सूरज यादव पैटन जी, पैटन के जी।
1: आप सभी को हम आपकी पसंदीदा का गाना जरूर सुनाएंगे।
0: धन्यवाद आपका
1: भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपने पसंद।
1: नमस्ते भाई जी।
0: नमस्कार, आप कौन?
1: मैं महाराष्ट्र रामकरा जिला सतारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: तुकाराम जी, कैसे हैं आप?
1: हम भी गए, आप कैसे भाई जी?
0: मैं भी बढ़िया।
1: और आपका भुज परिवार?
0: अरे, हमारा भुज परिवार बहुत बढ़िया है। और वहाँ पे सब कैसे हैं?
1: मौसम का क्या है?
0: मौसम में अभी गर्मी तो है थोड़ी बहुत, और बारिश नहीं हुई अभी तक।
1: जी, हमारे इधर भी क्या है, धीरे धीरे बरसात गिरते, फिर धूप निकलते, मौसम बहुत सुहाना है।
0: अरे क्या बात है, थोड़ी बारिश यहाँ पे भेज दीजिए।
1: हाँ, भेज देता हूँ, भगवान से कहता हूँ हमारे बहना के पास जा, उस पर दिन थोड़ा गर्म से राहत दे उनको।
0: जी, वैसे क्या सुनेंगे आज, कौन सा गाना?
1: दिल बिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे। कुछ मित्रों का नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी जी, जरूर बताइए।
1: हाँ, सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: अरे थैंक यू।
1: हमारे मित्र गौतम राय बोले जी, लोकेंद्र वर्मा जी, गंगाधर सावंतकर जी, हीरे भाई रबारी जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, सुनील झा जी, दिलीप ओझा जी, जी विठल पवार जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शिड़के जी, रमेश यादव जी, हम सभी को सुनाना चाहते हैं।
0: जी जी, जरूर सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। और जी, ऐसे ही हमें फोन करते रहिए और याद करते रहिए। धन्यवाद।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, आप कौन?
0: आप राम, कैसे हैं आप मैम?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बोल रहा हूँ। मैं भी ठीक हूँ। और मैडम गाना सुनवा दीजिए फिल्म में।
1: हाँ,
0: दो रास्ते का।
1: अच्छा, दो रास्ते का कौन सा गाना?
0: तो सारे नजारे हो, क्या बात हो गई, मोहम्मद रफी लता जी की आवाज है।
1: हाँ,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो बहन जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, आप कौन?
0: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
1: जगदीश जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत मजे में है बहन जी।
1: कैसे हैं घर में सब? कैसे हैं?
0: सब मजे में है बहन जी, आनंद में है। आप बताओ बहन जी, कैसे हो?
1: जी मैं भी बहुत बढ़िया।
0: अच्छी बात है जी, सब स्वस्थ होने चाहिए।
1: आज आप क्या सुनेंगे
0: बहन जी? फिल्म अनजाना का गीत है।
1: हाँ।
0: लता जी और रफी जी की आवाज में। और मैं उसका मुखड़ा गुनगुना के बताता हूँ जी।
1: जी जी जरूर।

भी चाय, पर फिर किससे बुनेंगे? तुम खामोशी से कहना, हम चुपके से सुनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, केयर एंड सपोर्ट। मैं तेनो फिर मिलांगी अमृता प्रीतम ना शब्दों साथे। हूँ आपनी अत्यारे रजा लेश। फोन इन आपनी पसंद कार्यक्रम अहीं जे संपन्न थयो। कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड कीप शाइनिंग। दिस इज रिद्धि मेहता। जय हिंद, जय भारत।

वो ची पुलाने शंख बो दरिया मामा छलियो बो ची पुलाने शंख बो थोड़ी चाले भाण चल मोटी मोटी स्टीम।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: विसराता सूर जूनी फिल्मोना यादगार गीतोनो आ कार्यक्रम आप आकाशवाणीना अमदावाद वडोदरा केन्द्र परथी सांभळी रह्या हता। मित्रों सवारना 11:30 थई छे। हिंदी गैर फिल्मी गीतो सांभळीए। कार्यक्रम में प्रथम गीत अलका याज्ञिकना स्वर में छे।
1: समंदर की लहरें अपने सरों पे झाग के ताज सजाए इठलाती हुई साहिलों की तरफ बढ़ती हैं। साहिलों पर चट्टाने हैं, लहरें चकनाचूर हो जाती हैं। अक्सर सपने भी सच्चाइयों से टकरा के यूं ही टूटते हैं, मगर दिल वो कमबख्त है कि फिर भी उम्मीद करता है, शायद कभी शायद कहीं।
0: गीतकार जावेद अख्तर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिंदी गैर फिल्मी गीतों कार्यक्रम में हवे सांभळीए गुलाम अली ने। गीत रचना मोमिन खान मोमिन ने छे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारत

भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्धस्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुबिनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भुज केंद्र है। अब पेश है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।

जय भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी फौजी भाइयों और बहनों, आज के कार्यक्रम की हम सफर में उर्वी आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूं। घर किससे पूछूं कि कहां गुम हूं कई बरसों से, हर तरफ हर जगह ढूंढता फिरता है मुझे मेरा घर। यहां वहां इधर उधर ठोकरे खाई तो ये मालूम हुआ कि घर किसे कहते हैं और क्या चीज है घर।

जिस जगह इंसान राहत की सबसे गहरी सांस लेता है वह जगह है उसका घर। दर बदर ठोकरे खाने के बाद ही तो मालूम होता है कि अपने घर में जो सुकून है वो और कहीं नहीं मिलता।

मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है कि घर की जिम्मेदारियां हर किसी को बड़ा बना देती है, सलीके से जीने का तरीका सिखा देती है।

जब बच्चे घर के बाहर काम करने के लिए जाते हैं या फिर पढ़ने जाते हैं, तब कई दिनों के बाद या कई बरसों के बाद घर जाने की उनकी खुशी कुछ अलग ही होती है। त्योहारों ने घर वापसी का फरमान सुनाया है, त्योहारों ने घर वापसी का फरमान सुनाया है, बड़े दिन बाद फिर मुझे अपनों ने बुलाया है।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अपने इस दिल में तुझको एक छोटा सा घर देना चाहता हूँ। उस स्वर्ग में एक सुकून, एक हकीकत देना चाहता हूँ। आज तुझसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

दोस्तों, गांव के घर की बात ही कुछ और है। एक तरफ शाम सुहानी, दूसरी तरफ ताजगी भरी भोर है। सचमुच स्वर्ग से कम नहीं गांव का घर, जहां एक तरफ पंछियों की चहचहाट, दूसरी तरफ बचपन का शोर है। काश लौट आता वो गांव में गुजरा दौर।

घर को घर रहने दो, घर को मकान मत होने दो। घर को घर रहने दो, घर को मकान मत होने दो। खोकर शहरों की भीड़ में गांव को सुमसान मत होने दो। प्रेम भाव रखो तो लौट आएंगे फिर वो दिन मेलजोल वाले। दिल को दिल ही रखने दो, दिल को चट्टान मत होने दो। तो खुशियां आपके घर का पता पूछते हुए खुद ही सामने से आएगी।

अपने घर में जब लौटा तो मिले कुछ यादों के जाले, कुछ बचपन के सपने, कुछ बिछड़े हुए दोस्त। बचपन के सपने मिले पर जब ये सब मिले तो ऐसे मिले जैसे कभी बिछड़े ही नहीं थे। तो दोस्तों, आशा रखती हूं कि आज का ये कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा। तो आज के इस कार्यक्रम की आपकी हम सफर उर्वी को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार, जय जवान।

जय भारती। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भुज केंद्र से सुन रहे थे। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात चुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात

0: बोले।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
0: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी

0: मैसिडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसी

तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને ભુજ કેન્દ્ર છે। શ્રોતા મિત્રો, અત્યારે બપોરના 3 મિનિટ, માફ કરશો, અત્યારે બપોરના 3:30 થઈ છે। અમારી આજની પ્રથમ સભાના કાર્યક્રમો અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ। ફરી મળીશું અમારી આજની બીજી સભામાં સાંજે 5 વાગે। ત્યાં સુધી આપની રજા લઈએ। નમસ્કાર।

0: સ્વાગત અને અભિવાદન આપનું આજની બીજી સભામાં. સાંજના 5 થવા જઈ રહ્યા છે. આકાશવાણી દિલ્હી કેન્દ્રથી પ્રસારિત હિન્દી સમાચાર બસ થોડી જ વારમાં.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં શક્તિ સિંહ. संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है. सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई. इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की. राज्यसभा में सब नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी बैठक में उपस्थित थे. मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया.
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर
3: पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं. मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था. लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने.
1: इससे पहले बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया. संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि NCPI मान्यता प्राप्त संसदीय दल नहीं है. हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी दल सदस्य बैठक में शामिल हुए. मानसून सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा. सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई. यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. जांजीबार के राष्ट्रपति और एवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिवानी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की. जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है. इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है. दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज उनसे मुलाकात की. जांजीबार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पौंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया. करीब 188 विद्यार्थियों को BTech, MTech और PhD की उपाधि प्रदान की गई. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी दिए गए. कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा. इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी. ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और यह राज्य के तटीय क्षेत्र में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा. मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुधार कर और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ओडिशा के तटीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर सादर नमन किया है. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया. फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा. ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया. भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 20वें ओवर में बिना विकेट खोए 124 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. The government today convened an all-party meeting at Parliament House and Nexi ahead of the monsoon session of the Parliament beginning tomorrow. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Leader of the House in Rajya Sabha Jagat Prakash Nadda, Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan were also present in the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues. He stressed that meaningful debate rather than disruptions is essential for strengthening democracy.
5: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the business advisory committee.
4: Earlier, just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in state assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. Talking to media, TMC MP Mohua Mitra said that the entire opposition parties, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM, Trinamool Congress and Aam Aadmi Party, have walked out from the meeting.
6: Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party have all walked out all party meeting in protest.
4: President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. In Jammu and Kashmir, at least four persons, including three women, lost their lives and several others are missing after heavy rainfall triggered landslides and flash floods at multiple places today. The worst affected areas is Surankot, Tehsil of Poonch district, where all deaths have been reported. Rajouri town was also hit by flash floods following incessant overnight rainfall. Lieutenant Governor Manoj Sinha reviewed the relief and rescue operations in Rajouri and Poonch. Chief Minister Omar Abdullah has also assured that all agencies are engaged in rescue and relief efforts. Union Home Minister Amit Shah spoke with Jammu and Kashmir Lieutenant Governor and Chief Minister and assured them of all possible assistance from the central government. Meanwhile, the Sri Mata Vaishno Devi Yatra and Sri Amarnath Ji Yatra remain suspended due to adverse weather conditions. The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall today over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Uttarakhand, parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Muzaffarabad and Uttar Pradesh are also expected to receive heavy rainfall during the day. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of Class 10 Second Board Examinations 2026. Students can access the results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.gov.in. Prime Minister Narendra Modi has congratulated PV Sindhu on winning the women's singles title of the Japan Open 2026. In a social media post, he described the win as a historic feat for Indian badminton. Prime Minister Modi said her determination and exceptional skills were on full display throughout the tournament. Earlier, PV Sindhu became the first Indian shuttler to win the prestigious Japan Open title. She defeated the local favourite and three-time world champion Akane Yamaguchi in straight games. Football fever has gripped fans across the globe as defending champions Argentina and European powerhouse Spain prepare for a thrilling showdown in the FIFA World Cup final at the New York, New Jersey stadium tonight. The title clash is scheduled to kick off at 12:30 a.m. Indian time. Last night, England secured bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third place match at the Miami stadium. French striker Kylian Mbappe has surpassed Lionel Messi's World Cup scoring record, taking his career tally to 22 goals and took the lead in the Golden Boot race. The series deciding third ODI between India and England is currently underway at Lord's in London, opting to bat first. England went 129 for no loss in 21.2 overs when reports last came in. India made three changes to their playing 11, bringing in KL Rahul, Arshdeep Singh and pacer Prince Yadav. Fast bowler Jasprit Bumrah has been rested due to a knee injury. And with that, we end this news bulletin.

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: सही श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

नमस्ते, ही आकाशवाणी आहे। हाणे ते ममता खूबचंदानी खां देश ऐं विदेश जा समाचार ॿुधंदा। सभ खां पहिरियों मुख्य समाचार। पार्लियामेंट जे चौमासे वारे इजलास खां अवल अॼु सरकार सभिनी धुरनि जी बैठक कोठाई। मर्कज़ी पार्लियामेंट्री कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मुखालफत खे अर्ज़ु कयो त हू पार्लियामेंट जे ईंदड़ चौमासे वारे इजलास जी कार्यवाहीअ खे बहितर नमूने हलाइण में मदद कनि। जम्मू कश्मीर में केतिरनि ई जायुनि ते अचानक बोड ऐं ज़मीन घिरकण सबबि केतिरा ई माण्हू मौत जो बखु बणिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टिन मुल्कनि जी यात्रा लाइ रवाना थी। बैडमिंटन में PV सिंधु जापान ओपन खटण वारी पहिरीं भारतीय बणिजी तवारीख़ रची ऐं फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जे फाइनल में अॼु अर्जेंटीना जो मुक़ाबिलो स्पेन सां थींदो। हाणे समाचार तफ़सीलवार ॿुधंदा। पार्लियामेंट जे चौमासे वारे इजलास जे सुभाणे शुरू थियण खां अॻु सरकार अॼु पार्लियामेंट भवन NXC में सभिनी धुरियुनि जी बैठक कोठाई। बैठक जी सदारत हिफ़ाज़ती मंत्री राजनाथ सिंह कई। असांजे खातो ॿुधायो त बैठक में पार्लियामेंट्री कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में हाउस जे नेता जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामेंट्री कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ऐं डॉक्टर एल मुरगन, अपना दल पार्टीअ जी अॻवान अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड जो अॻवान संजय झा, तेलुगु देशम पार्टीअ जो अॻवान लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस अॻवान जयराम रमेश, समाजवादी पार्टीअ जो अॻवान धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा जी राज्यसभा सांसद महुआ माझी ऐं 40 सी

0: असी धुरियुनि जा पंजाह अॻवाननि बैठक में शिरकत कई। हिकु रिपोर्ट।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: चौमासे वारे इजलास जे दौरान केतिरनि अहम बिलनि ते चर्चा ऐं उन्हनि खे बहाल करण जा कार्यक्रम आहे। मॉनसून इजलास सुभाणे खां शुरू थींदो ऐं ईंदड़ महीने जी 13 तारीख़ ताईं जारी रहंदो। मर्कज़ी पार्लियामेंट्री कार्यमंत्री किरेन रिजिजू मुखालपत खे अर्ज़ु कयो आहे त हू पार्लियामेंट्री जे ईंदड़ चौमासे वारे इजलास जी कार्यवाहीअ खे बहितर नमूने हलाइण में मदद कनि। मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल में श्री रिजिजूअ सभिनी सियासी धुरियुनि खे अपील कई त हू इन इजलास खे बहितर कमकार यकीनी बणाइण में योगदान ऐं सहकार ॾियनि। श्री रिजिजूअ चयो पार्लियामेंट्री सभिनी जी आहे ऐं इन दौरान सरकार मुख़्तलिफ़ कानूनी कम कंदी ऐं बिल पेश कंदी। हुन उमेद ज़ाहिर कई त मुखालपत ऐं सत्ता पख जा मेंबर रचनात्मक नमूने इन में हिसो वठनि। श्री रिजिजू चयो त पार्लियामेंट जेतिरो सुठे नमूने कमु कंदी मुल्क लाइ ओतिरो ही सुठो थींदो। हिकु रिपोर्ट।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: ही समाचार तव्हीं आकाशवाणीअ तां ॿुधी रहिया आहियो। वधीक समाचारनि जी तफ़सील जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था ऐं ही समाचार तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते बि ॿुधी सघो था। जम्मू कश्मीर जे पुंछ ज़िले में अॼु सुबुह तेज़ बरसाति सबबि ज़मीन गिरकण ऐं अचानक ॿोड़ अची वई, जंहिंमें टिनि महिलाउनि समेत चार माण्हुनि मौत जो बख बणिया ऐं केतिरा ई ॿिया लापता आहिनि। सभई मौत सभ खां वधीक मुतासिर सूरनकोट तहसील में थिया आहिनि। लोअर मुराह ॻोठ में हिकु घर ते पथर किरण सां घर जो मालिक ऐं परिवार जा 5 मेंबर लापता आहिनि। उप गवर्नर मनोज सिन्हा राजौरी ऐं पुंछ में बचाव ऐं राहत कमनि जो जाइज़ो वरितो। जम्मू कश्मीर जे राजौरी शहर में सॼी राति थियल बरसाति सबबि अचानक ॿोड आई। अॼु सुबुह बेला कॉलोनीअ जे नए बस स्टैंड समेत ॿोड जो पाणी हेठाईअ वारनि इलाइक़नि में भरिजण सबबि सवे माण्हुनि खे महफ़ूज़ जाइ ताईं पहुतायो वियो। जांजीबार जे राष्ट्रपति ऐं रेवोल्यूशनरी काउंसिल जे अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिवनी अॼु नई दिल्लीअ में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सां मुलाक़ात कई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अॼु मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया ऐं रोमानिया जी टिनि मुल्कनि जी यात्रा लाइ रवाना। असांजे खातो ॼाण ॾिनी त इहा यात्रा वापार, सीड़प, टेक्नोलॉजी, जिदत, तइलीम तोड़े अवामी राब्ते जहिड़नि खितनि में सहकार खे ओॼ ॾींदे टिन्ही मुल्कनि सां गॾु भारत जे बहमी लाॻापनि खे रफ़्तार अता करण जे ॾिस में अहमियत भरी मञी पई वञे। ॿिनि भेरनि वारी ओलंपिक पदक सोबियारी पीवी सिंधुअ पहिरियों दफ़ो जापान ओपन बैडमिंटन चटाभेटीअ जो ख़िताबु हासिलु करे वरितो आहे। इहा ख़िताबु खटण वारी पहिरीं भारतीय आहे। फाइनल में सिंधुअ 3 भेरा जापान जी वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची खे लगातार सैटर्न 21-17 21-17 तक।

थो कयो। सिंधुअ ॿिनि सालनि जे लंबे वक़्त खां पोइ कंहिं सुपर 750 चटाभेटीअ जो ख़िताब हासिलु कयो। नौजवान कार्यक्रम ऐं रांदि रूंद मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जापान ओपन बैडमिंटन चटाभेटी जो ख़िताब हासिलु करण ते पीवी सिंधुअ खे खीरियूं ॾिनियूं। डॉक्टर मनसुख मांडविया चयो त जापान ओपन जो ख़िताब खटण वारी पहिरीं भारतीय बणिजी सिंधुअ तवारीख़ी रची आहे। हुन साहिब चयो त उन जी इन हासिलात ते समूरो मुल्क फ़कुरांत आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स जो ख़िताब खटण ते भारतीय बैडमिंटन रांदीगर पीवी सिंधुअ खे नेक तमन्नाऊं ॾिनियूं आहिनि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ अॼु महान क्रांतिकारी ऐं आज़ादीअ जे जंगी जोधे मंगल पांडे खे उन जी जयंतीअ ते श्रद्धांजलि अर्पण कई आहे। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट में चयो त मंगल पांडे मातृ भूमि जे फ़ख़ुर ऐं सन्मान जी हिफ़ाज़त लाइ पंहिंजी जान जी क़ुर्बानी ॾिनी। गृह मंत्री अमित शाह ऐं हिफ़ाज़ती वज़ीर राजनाथ सिंह पिणु मंगल पांडे खे उन जी जयंतीअ ते श्रद्धांजलि अर्पण कई। भारतीय टेक्नोलॉजी इदारे IIT गोवा अॼु पोंडा में 7 पदवी इनायत समारोह मुंतजिम कयो। अटकल 188 शागिर्दनि खे BTech, MTech ऐं PhD जी डिग्री अता कई वई। कार्यक्रम में भारत सरकार जो वॾेरो साइंस सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ख़ासि महिमान तौरु शिरकत कई। रोड रस्ता आमदरफ़्त ऐं क़ौमी सहारा वज़रात ओडिशा जे साहिली इलाइक़े में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप क़ौमी सहारा जो विकास कंदो। इन मथां 8,000 करोड़ रुपियनि खां वधीक जी लाॻत ईंदी। रांदुनि पासे रुख कंदे भारत में फुटबॉल रांदि जी राजधानी कोठाईंदड़ कोलकाता में फीफा वर्ल्ड कप में अॼु थियण वारे फाइनल मुक़ाबले जे लाइ फुटबॉल जे चाहकनि में ज़बरदस्त उमंग ऐं ख़ुशी नज़र अची रही आहे। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फ़ैसिले वारो मुक़ाबिलो अॼु राति 12:30 बजे अर्जेंटीना ऐं स्पेन जे विच में खेॾियो वेंदो। मुख्य समाचार हिकु भेरो ॿीहर वरी ॿुधंदा। पार्लियामेंट जे चौमासे वारे इजलास खां अवल अॼु सरकार सभिनी धुरियुनि जी बैठक कोठाई। मर्कज़ी पार्लियामेंट्री कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मुखालपत खे अर्ज़ु कयो त हू पार्लियामेंट जे ईंदड़ चौमासे वारे इजलास जी कार्यवाहीअ खे बहितर नमूने हलाइण में मदद कनि। ॼम्मू कश्मीर में केतिरनि ई जायुनि ते अचानक बोड ऐं ज़मीन गिरकण सबबि केतिरा ई माण्हू मौत जो भुख बणिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 मुल्कनि जी यात्रा लाइ रवाना थी। सिंधी समाचारनि जो इहो अंक हिते समाप्त थियो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। नमस्ते।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया।

0: हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात चुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। આવતીકાલે શરૂ થનારા સંસદના ચોમાસું સત્ર અગાઉ સર્વપક્ષીય બેઠક યોજાઈ સંસદના સુચારુ સંચાલન માટે વિપક્ષોનો સરકારે સહયોગ માંગ્યો। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 37મા આંતરરાષ્ટ્રીય જીવ વિજ્ઞાન ઓલિમ્પિયાડમાં ભારતને ગૌરવ અપાવનાર વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા। રાજ્યના 7 ઔષધીય ઉદ્યાનોમાંથી 2,75,000 જેટલા ઔષધીય રોપાઓનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરાયું। રાજ્યના વન વિભાગ દ્વારા 50 સ્પોટેડ ડિયર એટલે કે ચિતલને સુરતના માંડવીના જંગલના છોડવામાં આવ્યા। જિલ્લાના પશુપાલકોને રાહત દરે સૂકા ઘાસનું વિતરણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી। આવતીકાલથી 5 પશુની મર્યાદામાં પશુ દીઠ દૈનિક 4 કિલોગ્રામ ઘાસનું રાહત દરે વિતરણ શરૂ કરાશે। ભુજના સ્મૃતિવન ખાતે ખેડૂતો સાથે પરિસંવાદમાં પ્રભારી મંત્રી કાંતિલાલ અમૃતિયાએ ખેડૂતો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પ્રશ્નોને તાત્કાલિક ઉકેલવા ખાતરી આપી। ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા ઐતિહાસિક હમીરસર તળાવ પર આવેલા વર્ષો જૂના અને જર્જરિત કૃષ્ણાજી પુલને તોડીને રૂપિયા 4.21 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે નવો બ્રિજ બનાવવામાં આવશે। ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના નેત્ર એક્સટેન્શન સેન્ટરનું ઉદઘાટન સમારોહ કચ્છ

0: 人护着，啊，这这不是比较紧张不如的，啊，这这可不是可拉红，你可得说的八个那么嘞，一个么的就提不成来这帮什么人呢？我们让他可怜可怜不透个呀，啊这。阿德伟呀，阿德伟呀，什么玩意儿？阿德，阿德，
1: 哎呀！别笑，别笑！
0: 阿妈的个呀！阿吉生气，哈的哈的，阿不尼家个，错了个伊！啊！格列家和格列尼，阿巴斯梅阿米勒海，皮肤勒拉巴达海，阿库格阿格安德拉查拉海，阿德，哦，派，上车，门外，这是叫啥呢？心里的跳动，伊玛，这是度。उपटी जा रही है और सारा बदन बारसी लोना हो गया। अरे ये किसने अपना ट्रक हमारे ऊपर चला दिया?
2: अरे बड़े मियां ट्रक नहीं, ये मेरी साइकिल है, साइकिल बचाते बचाते भिड़ गई। माफी चाहता हूँ, 8 साल से चला रहा हूँ मगर आज तक नहीं भिड़ी।
3: अबे ओए अंधा है क्या?
0: अरे हम भी 7 साल से पैदल चल रहे हैं, आज तक नहीं भिड़े। हाय लोगों, अरे सहारा देकर उठाओ भैया, जनाजा ही बचा है।
4: अरे अरे इसे तो पुलिस में देना चाहिए, बड़े मियां को कैसा तोड़फोड़ डाला है।
0: ठहरो ठहरो भैया ठहरो, ये मरा नाश पीटा तो हमें बकैयन लगता है।
2: क्या क्या बकैयन? कौन बकैयन? अरे मैं तो ब्रजेश चंद्र हूँ।
0: हाँ हाँ, अरे नाम बदल लो या चोला, पर हो बकैयन। अरे हमारा चश्मा कहीं लुढ़क गया तो क्या, हम बकैयन को नहीं पहचानते? ए लोगो, ये हमारे मोहल्ले का बकर इलाही उस बकैयन है।
1: बकैयन?
0: अरे साल भर पहले ये मजदूर फिल्म के चक्कर में बम्बई भाग गया था। आज हार लगा है।
2: अरे अरे क्या कर रहे हैं आप?
1: क्यों भे बकैयन है तू?
0: अरे लाना था इस पर, बाप इसका सड़क पर भीख मांगते मांगते चल बसा और ये मैयत पर भी नहीं आया।
2: बहुत बुरी बात है। क्या बक रहे हैं आप? क्या बक रहे हैं? मेरे पापा पीडब्ल्यूडी में हेड क्लर्क हैं।
1: पीडब्ल्यूडी में?
0: अरे हमसे मत उड़ो बेटा, हमसे मत उड़ो। और माँ इसकी फांसी लगाकर पार हो गई और ये जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ, चिरकूट कहीं का।
2: माई गॉड, मेरी मम्मी को भी मार डाला। अरे मैं तकैयन नहीं हूँ।
0: अबे तकैयन नहीं, बकैयन, बकैयन,
1: बकैयन।
0: अरे लोगों, इसका छोटा भाई 6 महीने से लापता है।
1: 6 महीने से?
0: हाँ, न जाने कहाँ कूड़े से पॉलिथीन बीन रहा होगा बेचारा।
2: हद हो गई, मेरा पूरा खानदान निपटा डाला इस बुड्ढे ने। चश्मा क्या गुम हुआ? अच्छा भला आदमी चुकैयन हो गया। दिस इज टू मच, आई कांट स्टैंड इट एनीमोर।
0: देखा देखा, अंग्रेजी में हल्का रहा है। अरे हम भी अंग्रेजी पढ़े हैं बकैयन, तेरे अब्बा को अंग्रेजी में भीख मांगना हम ही ने सिखाया था।
2: फिर वही नॉनसेंस, मैं बकैयन नहीं हूँ।
3: ज्यादा बको मत, तुम बकैयन हो या नेपोलियन, चलो जाकर अपने खर्च पर बड़े मियां का

0: आत्मा बनवाओ वरना पुलिस में दे देंगे।
1: हे भगवान, कहाँ फंस गया? कॉलेज की फीस के कुल 35 रुपए जेब में है। खैर देखते हैं। उठो बुड्ढन।
2: दैट्स गुड, संभाल कर ले जाइयो, बुजुर्ग आदमी है बेचारे।
1: आइए आइए मियाँ, संभल के, आगे मेन होल है, कहीं घुस गए तो अरेबियन सी में ही बॉडी मिलेगी। जाने किस मनहूस की सूरत देखकर चला था सुबह।
3: अरे बकरियाँ, अब बहुत कमजोरी लग रही है बेटा, अब कहीं शरबत अनार या शरबत बादाम वगैरह पिलवा फटाफट।
1: पहाड़ में गया बकैयन, यहाँ कहीं गन्ने के रस का ठेला भी नहीं है, कहीं किसी चश्मे वाले की दुकान भी नजर नहीं आती।
3: अरे तो मुझे टांगे या टैक्सी में किसी बड़े नर्सिंग होम में ले चल।
1: स्विट्जरलैंड न ले चलूं, फूस की टट्टी गुजराती ताला। हाँ वो ऑप्टिशियन का बोर्ड लगा हुआ है, आओ बड़े मियाँ।
3: अबे बेटा अब बूढ़ा हो गया हूँ, संभाल कर ले चल, हैंडल विद केयर।
1: अंग्रेजी मच्छों को, जल्दी बढ़ो, कॉलेज के दो पीरियड पहले ही मिस हो गए हैं। अरे देख के मियाँ, ठहरो, बोर्ड देखने दो, डॉक्टर WW ब्लैकआउट।
3: हाँ, WW ब्लैकआउट,
1: ऑप्टिशियन एंड आई स्पेशलिस्ट। बाप रे, खुद का नाम ब्लैकआउट और है आई स्पेशलिस्ट। बुलाता हूँ
4: डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब।
5: यस, क्या मांगता है?
3: मांगता? अरे बेको मांगा का? आता ही दे दीजिए।
1: डोंट माइंड हिम प्लीज, आप ही डॉक्टर ब्लैकआउट है?
5: और क्या, तो मैं, हम पोस्ट ऑफिस नजर आते हैं।
1: सॉरी डॉक्टर, इन बुड्ढन का चश्मा बनवाना है।
5: तो इस काम के वास्ते छह लोग क्यों आया है?
1: छह? हम तो दो ही हैं।
5: ओ वेट, आई सी 3 times विदाउट ग्लासेस, तर्जुमा बिना चश्मे मुझे हर चीज 3 गुनी नजर आती है। मेरा चश्मा कहाँ है? नाउ ओके, आप तो हैं।
1: और डॉक्टर, आपने गले में 3-3 चश्मे क्यों लटका रखे हैं?
5: लिसन, एक चश्मा दूर का चीज नजदीक देखने के वास्ते, दूसरा नजदीक का चीज दूर देखने के वास्ते, और तीसरा चश्मा इन दोनों चश्मों को ढूंढने के वास्ते। नाउ फॉलोड, तर्जुमा अब तुम समझे? अंदर आओ, आओ,
1: आइए।
5: कीप द ओल्ड मैन ऑन दैट स्टूल, तर्जुमा बुड्ढे को उस स्टूल पर रख दो, आपका जांच होगा।
1: अरे चाचा, स्टूल पर बैठ जाओ। बाल्टी में क्यों बैठे जा रहे हो?
3: अरे स्टूल का ढक्कन कहाँ है? ढक्कन?
1: अरे ये बाल्टी है चाचा, स्टूल इधर है। हाँ इधर, संभल के बैठ जाओ।
5: ओल्ड मैन, इंग्लिश पढ़े हो?
3: इंग्लिश? अरे आई कैन टीच इंग्लिश टू योर मदर्स हस्बैंड। तर्जुमा, हम तुम्हारे अब्बू को अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, समझा?
5: ओके ओके ओके, वो अंग्रेजी की तख्ती पढ़ो।
3: कौन सी तख्ती?
5: अरे वही जो सामने दीवार पर टंगी है।
3: कौन सी दीवार?
5: ओ माय गॉड, अरे इस कमरे की दीवार।
3: अरे कौन सा कमरा यार?
5: हेल विद यू, कमरा भी दिखाई नहीं पड़ता। यंग मैन, के सीरियस, मैं समझता था शॉर्ट सर्किट है, मगर लगता है पूरा ट्रांसफार्मर जल गया है। जंक्शन बॉक्स खोलना पड़ेगा, फेज चेंज होगा।
1: शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मर, जंक्शन बॉक्स, फेज। अरे आप चश्मा टेस्ट कर रहे हैं या बिजली की मरम्मत?
5: यू आर राइट, हम पहले बिजली का लाइनमैन था, धंधा नहीं जमा, ऑपरेशन का काम पकड़ लिया। डोंट वरी यंग मैन, मुझे आखिरी कोशिश करने दो। सिस्टर,
6: कमिंग माय डार्लिंग डियर लव।
1: आपने सिस्टर बुलाया? वो डार्लिंग डियर लव?
5: हाँ, दरअसल वो हमारा वाइफ भी है और नर्स भी, डॉक्टरी प्रोफेशन के हिसाब से उसे ऑन ड्यूटी सिस्टर ही बोलना पड़ता है ना।
6: बोलो हानी, हमेरे को काय के वास्ते याद किया?
5: सिस्टर, अंदर किचन से आटा गूंथने वाला सबसे बड़ा परात लाओ।
6: काय को? इन दोनों बैगर्स को इधर ही खाना खिलाना मांगता क्या?
5: ओह नो, आई टेस्ट, तर्जुमा आंख का जांच। सॉरी सिस्टर, पर आ तो इधर ही है। आई यू गो।
6: ओके माय डार्लिंग।
5: हाँ जी बोलो ओल्ड मैन, ये गोल गोल चीज क्या है?
3: भाई बड़े डॉक्टर, हमसे लगी मत करो, ये तो चवन्नी है, चवन्नी।
5: व्हाट? परात को चवन्नी बोलता है? ओ नो, माय हार्ट सिंक हो जाएगा। मैं ये लस्सी पीता हूँ ताकत के वास्ते।
1: ओ नो डॉक्टर, लस्सी की जरूरत मुझे है, मैं पीता हूँ।
5: गिलास इधर लाओ, ये लस्सी नहीं, साबुन का पानी है, लेंस धोने के वास्ते।
1: ओ सॉरी डॉक्टर, मैं समझा लस्सी है।
5: अब भी चैन आया, ये लस्सी ही था, बट फॉर प्राइवेट यूज, पब्लिक के लिए नहीं। नाउ यंग मैन, बुड्ढे का केस होपलेस है, पहले दोनों आंख के गोले निकालकर प्लेट में रखने होंगे।
1: क्या?
5: और फिर अंदर का लाइन चेक करना होगा कि कहां कहां अर्थिंग नहीं है, किधर किधर केबल डैमेज है, समझे।

0: अरे बुढ़ा मर गया तो मुझे फांसी चढ़ना पड़ेगा
1: बेटा बकैयर। अरे चश्मा पड़ने में देर है का बेटा?
2: अरे बैठे रहो, अभी लाइन चेक होगी।
1: अरे मुझे यहाँ से ले चल बकैयर, मुझे यहाँ से ले चल। ये कमक लाइन चेक करते करते पावर हाउस ही फूंक डालेगा। और यहाँ से ले चल बेटा।
2: अरे बैठे रहो अड्डे पर।
0: डियर डॉक्टर, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि लाइन खोले बगैर ही रोशनी आ जाए?
2: केबल में बेंतिया कचरा फंसा है।
0: वेट वेट डॉक्टर, उम्मीद नजर आती है। वो देखो, वो पुराना चश्मा, बुढ़े को ट्राई करो। अरे वो जो कोने में पड़ा है लगा कर देखो।
2: मगर तुम कैसे कह सकते हो कि वो पुराना चश्मा बुढ़े को लग जाएगा?
0: सिंपल अलजेब्रा, चश्मा पुराना, बुढ़ा पुराना, पुराना पुराना कट, चश्मा बुढ़ा, बुढ़े को चश्मा लग गया।
2: ओके ओके, लो ये चश्मा पहनो। अरे अब थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखो, लगाओ लगाओ।
1: हाय अल्लाह, या अल्लाह, अब मुझे शाम नजर आ रहा है, शाम नजर आ रहा है। डॉक्टर, कमरा, दीवार, टक्सी लिखा है ETDDLSSHO22WQQHH। देखो देखो देखो।
2: अरे बाप रे, ये तो सबसे महीन आखिरी लाइन तक सही पड़ गया मेरे कल।
1: अरे डॉक्टर, अब मुझे जन्नत तक साफ नजर आ रही है। देखो देखो, अब मेरे अब्बा हुजूर हुक्का पी रहे हैं, अम्मी दाल बीन रही है, अब फूफा कनकैया लड़ा रहे हैं। मगर ये नौजवान कौन है? ये मरा बकैयन कहाँ भाग गया?
0: जी मैं ही मरा बकैयन हूँ, जिसके बाप भीख मांगते थे, माँ ने फांसी लगा ली, छोटा भाई कूड़ेदान से पॉलीथीन बीन रहा है, और कुछ
1: बेटा माफ करना, अब बिना आँख के लालटेन के यही होता है बुढ़ापे में बेटा।
0: मगर डॉक्टर, ये चश्मा है किसका, कहाँ से आया?
2: वेट वेट, हमारा नर्स इधर लाकर फेंका। सिस्टर।
3: यस माय बटर टोस्ट, अभी हम तुमको बताता, हम जब शॉपिंग से लौटता था, रोड में भारी भीड़, ओ माय गॉड, क्या देखा, एक ओल्ड मैन साइकिल से टकरा कर गिर गया। बस इधर ही हमारे को ये फटीचे चश्मा मिल गया, हम लाकर इधर कोना में डाल दिया, सोचा किसी के काम आएगा, हमारे को दाम मिल जाएंगे।
0: ओह, तो ये बड़े मियाँ का ही खोया हुआ चश्मा है, भगवान का शुक्र है कि मिल गया।
1: अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, अब भाई खुदा हाफिज, अब डॉक्टर, अब बाय बाय। हाय लेडी, सी यू, बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय।
3: अरे बुढ़ापे में मेरे को गाय को मस्का मारता है ओल्ड चिंपैंजी।
1: आओ।
0: अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, शायद कॉलेज का लास्ट पीरियड मिल जाए।
2: अहीं ठहरो ठहरो, तुम किधर को जाता है? माय फीस 35 rupees ओनली।
0: फीस का है कि जिसका चश्मा था उसे मिल गया।
2: कंसल्टेशन और एग्जामिनेशन फीस जल्दी निकालो,
0: वरना
2: आई कीप टू हैंड्स। तर्ज माँ, मैं दो हाथ रखता हूँ, गर्दन टेस्ट कर डालूंगा। अंदर घर में मेरा साला फाइन चम भी है, 3 बार बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दे चुका है, फाइन चम।
1: आ रहा हूँ, दस्तारे पहन लूं जरा।
0: नहीं नहीं नहीं, फैंटम जी को क्यों कष्ट देते हैं, ये लीजिए 35 रुपए, मेरी फीस का तो सत्यानाश होना ही है।
3: क्या बोला सर, तुम्हारा फीस का रुपया है?
0: हाँ सिस्टर, आज ही जमा करानी है।
3: ओ कीप द मनी विद यू चाइल्ड एंड गेट गोइंग।
2: तर्जुमा, बच्चे पैसा अपने पास रखो और जाओ फूट जाओ।

ये थी झलकी लालटेन की वापसी। इसे लिखा केपी सक्सेना ने, निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत किया करते हैं।
0: सोमवार से

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से। आवाजें अरिजीत सिंह और शाह साहब त्रिपति की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं गीत आपने सुना फिल्म युवा से, आवाजें एआर रहमान, सुनीता सारथी और तन्वी की थी। गीत के बोल महबूब के और संगीत एआर रहमान का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मले।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल कुमार जगदीप वारिंग और जोश ब्रार के, संगीत सलामत अली मोहतगी और जोश ब्रार का था।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया। इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।

0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: Which would help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के

0: राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388-run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting in Parliament House, Annexe. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that this entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party.
4: Today the entire opposition, all parties have all walked out, all party meeting in protest because NCPI, which is an unrecognized party, these so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people exchanges. Ambassador to Moldova and Romania, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, has said that President Murmu's visit to the two countries will be historic. Talking to Prasar Bharati, Dr. Mohapatra said India and Moldova enjoy warm and friendly relations and the visit would mark a significant and historic milestone and elevate bilateral ties to a broad-based partnership.
5: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova. Similarly, when we talk about Romania, and it would be basically in the more than 3 decades. So given that importance, it is historic. Both the countries and the leaders with the leadership, we would be very much happy to review our existing bilateral relationship. We would be also identifying the key areas. In fact, Honorable President is accompanied by a strong business delegation. Similarly, Honorable President would be visiting the parliament in Romania as well as Moldova, which would help us strengthen the parliamentary

0: ये
1: मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मानसून सत्र जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहां पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मानसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
3: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खास कर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब उन लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसपे मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन के पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के

0: ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और लोग अपने देश हित का, देश हित का ज्यादा ध्यान देंगे, न के परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस की नहीं, पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई, जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि कैप्सॉन की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, उन्होंने नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या? जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो, आपने देखा होगा विकास की जो बात करें कितना भ्रष्टाचार क्या है, लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं, और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है, और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों पर रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा यह सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं, तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
3: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त किए है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की, वो तमाम वापिस लें। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार खेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मानसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या

0: रणनीति है, और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
1: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता आया है और यही करते रहेंगे।
0: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है, और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद, ये देश के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए। वो अपील जो है, जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई, और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अब ये अपने आप ही गैप खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं, उनके जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, पर उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे, आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है, जो भी इसमें चेंजेस के बाद है, वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
0: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
3: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे वो राजनीति है? क्या अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या क्या हम अगर ईरान के साथ अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें वो राजनीति है? क्या राजनीति जो राजनीतिक मंच है राजनीतिक मसले हैं उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए डायलॉग से नहीं किया जाए तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपने जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं हुआ और SIT आपने गठन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है पूरा देश जो है उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ चाहिए जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है तो ये एक नैतिक, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
0: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दे हैं? हम तो बिल्कुल जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था निर्यात होता था उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो जीरो अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको भुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
0: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
4: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे, उस समय बिल पास नहीं होने दिया। फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजॉरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
0: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
2: देखिए, आप ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या डिसरप्शन होता है, और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी ना कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी इसमें तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था, और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं, और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर्स हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है, और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
0: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
3: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें है डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहां पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहां पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहां पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
0: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
4: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, ईट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
0: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या संदेश होगा?
2: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हो और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
0: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
5: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से

0: आप तक की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मदुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रवि बासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर hails from the lineage of renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Tiruchi Sri S. Ganesan. After completing Music Senior Certificate course from Thrissur Sri Rama Verma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades.
0: Aaj ke karyakram mein Srimati Balamani Ishwar ke saath sangat kar rahe hain violin par Srimati Parur M.K. Anant Lakshmi, mridangam par Sri B. Ganapati Raman tatha kanjira par श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव बारमा से कर रही हैं। राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकंपनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड Udupi Sri S. Srikant on the Kanjira. The concert begins with Brova Barama, composed by Saint Tyagaraja, in Rag Bahudari, set to Adi Tal.

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एमके अनंतलक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी। In the Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, you are listening to a vocal recital by Srimati Balamani Ishwar. She is accompanied by Parur Srimati M.K. Anantalakshmi on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the Mridangam, and Udupi Shri S. Srikant on the Kanjira. Listen now to Pakkala Nilapati, composed by Saint Yagaraja in Raag Karahara Priya, set to Mr. Chaputal.

0: रचना के अंत में आपने सुना तनि आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही हैं रचना मनदिर कुहंदद। सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: दैट वाज अ तनि आवर्तनम परफॉर्म बाय श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। श्रीमती बालामणि ईश्वर कंक्लूड्स द कॉन्सर्ट विद मनदिर कुगंदद, कंपोज्ड बाय तंजावूर शंकर अय्यर इन राग सिंधु भैरवी सेट टू ताल आ।

रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड द वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Recorded in the studios of Akashvani Madurai, this broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता

0: धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
3: There are various